0: गुरु की बाणी भिज के पढ़ते ने कोई जल अमृत बन जाता है। जदों वो जल सिख दे खिरदे भी जाता है अंदर नूं भी धो देता है। जे नाल कमाई करिए पर वैसे रहत नामे विच एक शब्द उन्हां कहा कह लगे प्रथम रहत जे जान खंडे की पौल छके। उन्होंने प्रथम रहत शब्द वरत्या इहदा मतलब हर सिख लई लाजमी है जिन्हें जीवन कमाना है उहदे लई प्रथम रहत शब्द वरत्या। रहत नामे वाले गुरसिखां ने कहन लगे उन्हां पंजां तों जदों अमृत लएगा अंदर भी गुरु कृपा करेगा नेत्रां नूं भी गुरु कृपा करके स्वच्छता बख्शेगा तेरे शीश भी जदों निपया अमृत ते जेड़े बचन तू पढ़ना गगन दमामा बाजियो परे निशाना कहो उथे गुरु की रहमत वरतेगी। साहब ने कृपा करके अमृत आप पान किया गुरसिखा अमृत की दात दिती। मैं एक बेनती करके समाप्ति करना। प्रोफेसर पूरन सिंह ने एक शब्द बड़ा प्यारा वरते असी अपने अपने ढंग नाल खालसे की परिभाषा संगत सामने रखने हैं। कहिंदे ने जदों मेरे गुरुदेव एकाग्रता बख्शना दमदमा साहब की धरती ते पहुंचे ने ना ते भाई डल्ले ने रज के सेवा की। भावा सूबा सरहंद ने अपने वालों कि डरावा भी दिता है पर कहिंदे ने तां वी उह गुरु कलगी वाले दे चरणा का भवरा बनिया रहा। एक दिन बैठिया अचनचेत एकाग्रता बख्शिया दे थोड़ी जी एक दिन बैठिया अचनचेत भाई डल्ले का जदों ये पता लगा कि सूबे सरहंद की धमकी की भी इन्हें परवाह नहीं की ते हजूर ने हस के कहा डलिया जो कुछ तू मंगेगा मैं तेरी झोली विच पा देंगा कुछ मंग तो सही। ते डल्ले ने एक बेनती की दातिया जे त्रुट है ते कृपा कर अपने चरणा विच पीड़ी जिनी थां दे दे। साहब उस वक्त सोची पै गए ते अगो उत्तर बड़े कमाल दा दिता कहन लगे डल्या थां लैना चाहने गुरु दे चरणा विच सेवा की केवल दुनिया तक सीमित रह के दुनिया की सेवा करके तू दीन पिया मंगना है जे गुरु दे चरणा विच दात लैनी आ ते चेते रखी अमृत की दात लैके तेनू खालसा बनना पएगा। वाहगुरु जी का खालसा बन। उन्हें पूछा महाराज खालसे की परिभाषा। साहब ने बड़े प्यारे बचन कहे कहन लगे डल्या खालसा एदा मतलब ए नहीं कि जिवें आ तेरे किले ने इसे तरह वाहगुरु का खालसा है। आप शब्द परतने ना वाहगुरु जी का खालसा कहन लगे जिवें तेरे किले ने इस तरह वाहगुरु का खालसा नहीं जिवें तेरे हाथी घोड़े तेरी जमीन भुए पांडा इस तरह मेरा वाहगुरु का खालसा नहीं। कहन लगा फिर होर क्यों जहा खालसा। तो साहब ने बड़े प्यारे बचन कह कहन लगे सजना अज किले तेरे ने तू चला गया किले फिर भी कायम रहने ने। चेते रखी अज भोए भांडा जमीन तेरा कल नू चला गया जमीन फिर भी रहेगी। वाहगुरु जी का खालसा इस तरह नहीं। कहन लगे वाहगुरु जी का खालसा इस तरह है जिवें सूरज ते सूरज दी किरणा कह जे सूरज है किरणा ने जे सूरज ने ते किरण दी होंद की देखो कैसा संबंध है। आपां सूरज दी किरण कहने पर इन्नी कु नेड़ता है सूरज है तां किरणे। कहन लगे जिवें पानी ते पानी दा चश्मा है सजना जेड़ा चश्मे विचों पानी निकलता है वह ताई निर्मलताई नाल है जे ओदे नाल जुड़िया ओदे तो टुट के ओ नहीं रह सकता। कहन लगे खालसा इस तरह है जिवें सूरज ते सूरज की किरण जिवें पानी का चश्मा ते पानी। कहन लगे जिवें एक रुख ते रुख की टाणी नाल लगा हुआ पत्ता जे वह पत्ता जुड़िया ओदे अंदर हरियावल है। प्यारियो उस वक्त साहब ने क्या डलिया जे कुछ लैना चाहना दीन विच थां भालना है ते पहला अपने अंदर गुरु नूं थां दित्ती आ किलियां विच थां दे दित्ती इस धरती ते तू रहण लई थां दित्ती अपने अंदर गुरु नूं थां दे। कहिंदा साहिब जी मैं समझिया नहीं। कहन लगे अंदर तू अमृत दी दात पहला लै ते चेते रखी रुपये नाल अमृत नहीं। भगतां ने भी बाणी विच बचन कीते कहिंदे ने नाम ते गुरु की कृपा दौलत नाल नहीं। भगत रविदास का सी बचन पढ़ने मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन कटै जिन दर्द मता घट ना जाए। पुछा क्यों कहन लगे मैं तो मोल महंगी लई किन्ने कु रुपये नाल कहन लगे जी सटै अपनी जिद दे के। भगत कबीर ने बचन किया कहन लगे कंचन सिंह पाई है नहीं तोल मन दे राम लिया है मोल। साहब ने बाणी विच क्या कहन लगे चेते
1: खरीदा जान लब तान हो क्या लब

जंगल क्या टूंडे हैं, फरीदा इन्नी निकी जंगी है, थाल डूंगर पव्यों, आज फरीद कुजड़ा सैकू हाथियों, फरीदा इन्नी निकी जंगी है,

ठाकुर प्रभु तुम्हारी शिष्य राखो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जी।

दई खड़ा न आप मुहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे पाक पवित्र अते निगी गोदा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, मन बिरतियां एकाग्र करके बैन अते सुनन दी कृपालता करियो। आप कल दे रोज तो लड़ीवार कथा सरवण कर रहे हो भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों। ये सलोक कल दे रोज शुरू कीता सी, जित दिहाड़े तनवरी साहे लै लिखाए। मलक जे कन्नी सुनीदा मुंह दिखाले आए, जिंद निमाणी कढ़िए हड्डा को कड़काए। इथों तक आप कल दे रोज सरवण कर चुके। इस तो अगे साहे लिखे ना चलनी, चलनी का मतलब हुंदा है टलना। जो साह लिखिया गया दिन मुकर्र हो गया कि ऐस दिन तेनू चलना पैना है, इस वक्त दे उते रुखसत होना पैना है। ओ गिनिया मिथिया साह, बाबा फरीद साहब जी कहन लगे चलन वाला नहीं है, टलन वाला नहीं है। ना ते उस साहे नू टलन वास्ते किसी अप्रोच ने कम देना है, ना उस घड़ी नू मौत वाले पल नू

की है सज्जन अंदरों बदलिया। अंदर दी बदलाहट दा ना ही मनमुख है, अंदर दे बदल जान दा ना ही गुरमुख है। इस बेनती नूं बड़े ध्यान नाल समझ लेना। अंदर बदलन करके ना ठग है, अंदर बदलन करके ना सज्जन है। अंदर बदलन करके लोग चोर कह देंदे ने, अंदर बदलन करके लोग साधु कह देंदे ने। जो अपने अंदर नूं बदलदा है, जिन्हों आपां दरवेश कहने आ, ओ वी उन्हों कहना चाहिए है जिदा अंदर बदलिया होवे, जिदा अंदर सुधरिया होवे। मैं फिर बेनती दोहरा रहा, गल आरंभ कीती सी कि धर्म दी दुनिया दे अंदर तन दा प्रवेश कर जाना एक होर अर्थ रखदा है, ते धर्म दी दुनिया दे अंदर मन दा प्रवेश कर जाना एक होर अर्थ रखदा है। तन करके धर्मी बन जाना एक होर मायने निकलदे ने, मन करके धर्म कबूल लेना ते धर्मी बन जाना एक होर मायने निकलदे ने। कोई तन दे उत्ते तोती ला लवे, मथे दे उत्ते तिलक सजा लवे, गल दे अंदर तेरे धागे दा जनेऊ पा लवे, ते गीता दे 18 अध्याय विचों ओ गीता दा एक भी सलोक ना मन्ने, ओ बाहरों दिसेगा हिंदू है, अंदरों ओ हिंदू नहीं, क्योंकि गीता दे सलोक नूं मनदा नहीं है। कोई मुछा कटवा लवे, दाढ़ी रख लवे, हाथ विच तस्बी रखे, कुरान दी तलावत करे, रोजे रखे, चलिए कटे, बाहरों वेशभूषा तो नजर पेगा, सुन्नत होई होवे कि यह मुसलमान है, पर जे कुरान दी किसे आयत नूं नाल लेके जीवन दे अंदर चल ही नहीं रहा, ते फिर वह विखावे दा मुसलमान है, सच्चा मुसलमान नहीं है। हुण मैं गल अपनी करा, जे कोई बाहरों पंज ककारी बाणा भी पा लवे, बाहरों गिट्टियां तक लम्मा चोला भी पा लवे, गल दे अंदर पंज सत जलाओ बनाउण वास्ते माला भी सुट लवे, बाहरों नजर आएगा ये बड़ा दरवेश है, बड़ा गुरमुख है, बड़ा प्यारा है, ते जे अंदर गुरबाणी दा एक वचन नाल लेके नहीं चल रहा, ते फिर कहना पएगा इस तरह दा दरवेश सगों दुनिया नूं कुराए पाउण दा काम कर रहा है। इस तरह दा दरवेश जिदे अंदर कुछ नहीं पर बाहर है। गुरु बाबे ने सानू पहला अंदर सुधारण वास्ते हुक्म फरमाया, अपने मन नूं पहला सुधार, अंदर नूं पहला सुधार, ते जे अंदर नूं सुधार लवेगा, तेरे तन दे उत्ते होवे बाणा, तन दे उत्ते नजर आवे तन नूं वेख के कि बड़ा चंगा है, गुरमुख है, लोग तेरे नेड़े लगन, तेरी संगत दी रंगत कबूल करन, लोकां दा जीवन बदले, तेरे जीवन दे असर नूं पा के लोग कहणगे बड़ा चंगा है, पर नतीजा उल्टा निकलदा नजर आ रहा है। जद लोग दूरों वेखदे ने ते दिसदा है कि बड़ा चंगा है, ते जद लोग तेरे नेड़े होके तेनू वेखदे ने नजर आ जांदा है चंगा नहीं है। परम सी भुलेखा सी जो उड गया। धन गुरु अर्जन देव साहब जी दा एक वचन मैं तुहाडे सामने रखदा चला। गुरु अर्जन देव साहब जी ने एक जिमीदार दी उदाहरण दे के सानू समझाउण दा यतन कीता है। कहन लगे अनिक बस्तर सुंदर पहराया, ज्यों डरना खेत माहे डराया। कहन लगे एक जिमीदार दे खेत सन बहुते, उन्हें कई खेतां दे अंदर बीज बीज दिता, कणक दा बीज, दूजा तीजा बीज, फसलां फुलां फलां दे बीज उन्हें अपने कई खेतां दे अंदर बीज दिते। होया कि जिमीदार ने वेख्या कि मेरे बीजे हुए बीज नूं कबूतर चुगदे ने, कां चुगदे ने, चिड़िया चुगदियां ने, परिंदे आउंदे ने, बीज चुकदे ने, उडारी भर जांदे ने, ते मैं इकल्ला, खेत बहुते ने, इन्हां खेतां दी रखवाली करां ते किवें करां। जिमीदार दे हिरदे दे अंदरों एक तजवीज दा जन्म होया, उहदे अंदरों एक सोच दा जन्म होया। उन्हें कखां कानां दा पुतला बनाया, का फूस इकट्ठा करके ना उन्हें पुतला बनाया, ते उस पुतले दा सिर भी बनाया, उस पुतले दियां बाहां भी बनाईयां, उस पुतले दियां लत्तां भी बनाईयां, ते फिर कीता कि उस पुतले दे सिर दे उत्ते ना एक कपड़ा भी रख दिता, उस पुतले नूं एक फटिया पुराना कमीज चोला भी पवा दिता, उस पुतले नूं गड़ दिता एक खेत दे दरमियान जाके। और सोच ए काम कर रही सी कि जेड़ियां चिड़ियां कां कबूतर ने परिंदे ने इन्हां नूं इस गल दा भुलेखा बनिया रहे कि खेत दा मालक जिमीदार खेत दे अंदर है, असी दाणा चुगांगे, ए सानू मारेगा, असी दाणा चुगण वास्ते जाना नहीं, ए डरदे डरदे परां परां उडारी भर के चले जाण, नेड़े आउणी ना।
ਹੋਇਆ ਇਹ

गोविंद कृपा निदान जगद गुरु हे संसार ताप हरण करुणा मैं सब दुख हरू हे शरण जोग दयाल दीना नाथ मया करू शरीर स्वस्थ कीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधुवै वाहे गुरु साहिब जीओ फरीदा

हरिदा जोतै मारन मुकिया तिना न मारे घुमा आपन डै कर जाइए पैर तिना दे चुम्मा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनों चल रही लड़ी वार कथा भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों रोज रोज सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकागर करो भगत फरीद साहब जी दे इना सलोकां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां मैं आप संगत दे सन्मुख रखन दा नमाणा यतन करा। भगत जी दा पहला सलोक जो अज पढ़ के सुनाए गए फरीदा जे तू अकल लतीफ लतीफ कहिंदे ने अकल वाला लतीफ कहिंदे ने अकल याफ्ता ज्ञान वाला सूझवान बंदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख। कहन लगे जे तू ए कबूल कर रहा है कि मैं समझदार हां ते फिर अपने वास्ते काले लेख क्यों लिख रहे हैं अपने वास्ते कालख इकट्ठी क्यों कर रहे हैं किसी दूसरे नूं बचाउणा ते नंबर दो दी गल उस तो अगे दी घटना अपने आप नूं ते बचा। गुरु अर्जन देव साहब सुखमणी साहब दे अंदर इस तरह ही हुक्म करदे ने जे जानत हौ आपो बचे जे तू जानदा है कि मैं सूझवान आ ते फिर अपना आपा विकारां कोलों बचा के विखा अपने पल्ले नूं संकोच के रख इनू चिकड़ दे अंदर भरन ना दे जे तू जानना है कि मैं सियाना। हर मनुख अपनी अकल दे उत्ते बहुत वड्डा कॉन्फिडेंस रखदा है हर चीज दूसरे दी प्यारी लग जांदी है कारोबार दूसरे दा चंगा जेब दूजे दी धन विच घट भी होवे तां वी लगदा है मेरे नालों ज्यादा माण प्रभु।

इच्छा रहया दूर। देख फरीता जेथिया सकर होई बिस, साईं बाजों अपने वेदन कहिए किस।

हां बुलारे हां जो कुछ हां इस विचकारले समय दे अंदर जब जन्म होया ते जन्म दे नाल केवल एक मनुखी बच्चे दा जन्म होया होर कुछ भी नहीं। कदी किसी ने गल नहीं कही कि डॉक्टर दे घर दे अंदर बच्चे दा जन्म होया है ते जन्म लेंद्या सार ओ भी डॉक्टर है। जन्म लेंद्या सार बस वो एक बच्चा है डॉक्टर नहीं है। कदी ये गल सुनन विच नहीं आई कि एक विज्ञानी साइंटिस्ट दे ग्रह विखे एक बच्ची जां बच्चे दा जन्म होया ते ओ बच्चा जन्म तो लैके ही साइंटिस्ट है विज्ञानी है। जन्म तो लैके बच्चा विज्ञानी नहीं केवल बच्चा है। एक टीचर मां टीचर पिता इस तरह के मां बाप दे घर दे अंदर जन्म लेके आउन वाला बच्चा जन्म तो टीचर नहीं वो बस केवल मनुखी बच्चा है। जन्म दे नाल वो कारोबारी भी नहीं जन्म दे नाल वो व्यापारी भी नहीं जन्म दे नाल वो पढ़िया लिखिया भी नहीं जन्म दे नाल वो कुछ भी नहीं। जो कुछ बने वो जन्म तो बाद जो कुछ बने वो मौत तो पहला इस विचकारले समय दे अंदर। इनू मैं इस तरह बेनती करा कि मां दे गर्भ दे अंदरों जद बच्चे दा जन्म हुंदा है ते एक अनकड़े पत्थर वर्गे बच्चे दा जन्म हुंदा है। अनकड़े पत्थर वर्गे अनकड़िया पत्थर आप 2-4-5 किलो दा एक माने क्वांटल दा पत्थर चुको अनकड़िया पत्थर ते उस अनकड़े हुए पत्थर नू बाजार दे अंदर वेचन वास्ते निकल जाओ ते बाजार दे अंदर अनकड़े पत्थर दी कौन कीमत देगा। बड़े पत्थर दुनिया दे अंदर रुलदे ने पहाड़ां दे पहाड़ पए ने सड़कां दे किनारे मील पत्थर ने कौन ओदी कीमत चुकाएगा जो पत्थर घड़िया नहीं। पर उही पत्थर जद एक सियाने कारीगर दे हत्थां विच चला जांदा है वो पत्थर तराशिया जांदा है पत्थर घड़िया जांदा है ते फिर उनू बाजार दे अंदर लेके जाओ फिर ओदी कीमत देन वाले सैकड़े मिल जाणगे। अनकड़े पत्थर दी कीमत नहीं पैंदी घड़े होए पत्थर दी कीमत पैंदी। ओही अनकड़िया पत्थर एक तस्वीर बन जाए तस्वीर दे उत्ते चंगे चंगे रंग उडेल दिते जान भर दिते जान ते ओ मन मोहनी तस्वीर दे गाहक ते मार्केट दे अंदर बड़े ने। पर अनकड़िया बिगड़िया तिगड़िया पत्थर इस तरह दे पत्थर दे गाहक कौन ने। मां दे गर्भ विचों जद भी बच्चे दा जन्म हुंदा है अनकड़े पत्थर वर्गे बच्चे दा जन्म हुंदा है। उस तो बाद मां बाप दी संगत मां बाप दा घर दा बनाया होया माहौल इस तरह बच्चे दे संस्कार कर्म धर्म बनने आरंभ हो जांदे ने। उस तो बाद फिर बच्चे नूं जिहड़ी जिहड़ी संगत मिलदी है जिस तरह दी संगत मिलदी है वो अपने मन नूं तिवें दा करना शुरू कर देंदा है। एक मैं होर बेनती करा लोहे नूं जद भी कोई मोड़ तोड़ के हथौड़े दियां चोटां मार के सट्टां मार के कुछ बनाउंदा है पर लोहा गर्म होवे लोहा उस तरह ही बनना शुरू हो जांदा है पर गर्म होवे ठंडा नहीं। गर्म लोहा वैसे ही अपने आप नूं ढलना शुरू कर देंदा है जिस तरह उहदे मालक दी मर्जी हुंदी है बनाउण वाले दी मर्जी हुंदी है। मन भी साडा इस तरह दा है इनू जिस तरह की संगत दे अंदर आप लेके चले जाओ मन भी तिवें तिवें ढलना शुरू हो जाता है। इनू जुआरियां दी संगत दे अंदर ले जाओ उन्हां दा रंग कबूलना शुरू कर देंदा है। चोरां दी संगत दे अंदर लेके चले जाओ वह रंग कबूलना शुरू कर देंदा है। इनू गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे अंदर लेके आ जाओ ते सहजे सहजे ये रंग कबूलना शुरू कर देंदा है। ए मन अपने आप नूं तिवें ही मोड़ देना शुरू कर देंदा है जिस तरह दी इनू संगत मिलदी जिस तरह दा इनू त्राशन ते सवारन वाला मिलदा जिस तरह दा कारीगर है कारीगर दी मर्जी उहने पत्थर नूं कढ़ के श्री राम दी मूर्ति बनाउणी है श्री कृष्ण दी मूर्ति बनाउणी है गुरु नानक पातशाह महाराज जी दी मूर्ति बनाउणी है जां किसे योधे सूरमे दी मूर्ति बनाउणी है। पत्थर इनकारी नहीं हुंदा कि तू मैनू ए मूरत दा रूप देना चाहुंदा है ते मैं ए मूरत बनन लई तैयार नहीं हां पत्थर कदे इनकारी नहीं हुंदा। करन वाले दी मर्जी उहनू मूर्ति बना के कोई भी नाम उहनू दे देवे करन वाले दी मर्जी है। मन हर वक्त मुड़न लई तैयार है पर इहनू घड़दी कौण है संगत जिस तरह दी संगत दे अंदर लैके चले जाओ ए मन जिस तरह दे हत्थां दे अंदर छड्ड दिओ मन तिवें अपने आप नूं मोड़ना शुरू कर देंदा है तिवें दा अपने आप नूं सवारना शुरू कर देंदा है।
तो महाराज यह कर रहा सा कि जन्म तो पहला असी कुछ नहीं सी, और यह गल मैं आम मनुखी लेवल दे उत्ते कर रहा गुरु साहबाना नूं छड के, क्योंकि गुरु साहबाना वास्ते भट्टा ने अपनी रसना दे नाल एक बचन किया है कि तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव साहब जी, तुसी जन्म तो लैके पार ब्रह्म परमेश्वर दी जानकारी रखण वाले हो, उन्हां नूं इस दायरे विचों बाहर करके, आम मनुखी तल दी मैं गल कर रहा, जन्म तो लैके कुछ नहीं सी, मौत तो बाद कुछ बनन दा यतन नहीं है, इस विचकारले समय दे अंदर तुसी अपने आप नूं सवारना है, ते विचकारले समय दे अंदर अपने आप नूं विगाड़ लो, समा तां बीतदा जांदा है, अपने आप नूं सवार लो, समा तां बीतदा जांदा है, इह समा रुकदा नहीं है। अज दे महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी कह रहे ने, जन्म तेरी शुरुआत, मौत तेरे जीवन दी लीला दा अंत, इन्हां दोवां दे विचकार हुण तूं वेख के कित्थे खड़ा है। भगत जी कहन लगे, तू वेख जो थिया के हुण कित्थे खड़ा है, हुण तेरे शरीर दे उत्ते केड़ी बहार है, ते छे समझ ना आवे। ते भगत जी कहन लगे, तेरी दाढ़ी दा रंग पूर हो गया, पूर दा मतलब चिट्टा होया, ते चिट्टे दा मतलब मौत नेड़े नेड़े आउंदी नजर पै रही है। तुहाडे विच कई भैणां वीर मनो विज्ञानी होणगे, इक मैं मुखसर बेनती तुहाडे सामने रखदा चला, जवानी दा रंग इन्हां वालां दा काला रंग, और ये मनुख ने नहीं बनाया कि चलो जवानी दे अंदर रंग काला कर देने, बुढ़ापे दे अंदर चिट्टा कर देने, मनुख दी काढ़ नहीं है, मनुख ने नहीं बनाया, ये प्रकृति दा अटल नियम है, परमात्मा दा ये ना बदलन वाला दस्तूर है, नियम है, जवानी दा रंग काला, वालां दा, केसां दा, और बुढ़ापे दा रंग चिट्टा। हुण जद इन्हां वालां दा रंग बदल के चिट्टा होना शुरू हुंदा है, और निता प्रति सफेदी दे अंदर आने शुरू हुंदे ने, बंदे नूं ना सफेद रंग पसंद है अपने वालां दे उत्ते, ते ना ए जिस आरजा दी निशानी है वह आरजा ही पसंद है, क्योंकि बुढ़ापे दी निशानी है चिट्टे वाल, ना बुढ़ापा पसंद है, ते जद बुढ़ापा ही पसंद नहीं, ते फिर मैं बुढ़ापे दीयां निशानियां नूं अपने कोल क्यों रखा। मनोविज्ञानी सज्जन कहिंदे ने, जद इहनूं बुढ़ापा पसंद नहीं हुंदा, ते मन दीयां तरंगां, मन दीयां वेव जिस तरह कहिंदियां ने कि बुढ़ापे दी निशानी कोल ना रहे, इहनां नूं बदल, इहनां दा रंग बदल, इन्हां नूं रोज रोज बदल बदल के बंदा काला करदा है, पर कमाल दी गल है जिहड़े नवें वाल उगदे ने, जड़ां निकलदियां ने, फिर चिट्टियां ही निकलदियां ने, इन्हां नूं रोज रोज तुसीं रंग नूं बदलना शुरू करदे हो, पर ए रोज रोज अपना असली रंग विखाउंदे ने, और बंदे दे लक्षण, बहना उठना, मूंह दीयां चरूड़ियां, इहदे अंगां दी ताकत, इहदे शरीर दीयां निशानियां ही बयान कर देंदियां ने कि हुण तू बुढ़ा हो गया, कबूल कर कि मैं बुढ़ा हो गया। ते फिर एक बेनती मैं होर भी करदा चला, तकरीबन तकरीबन बहुते आंकड़े दुनिया दे अंदर इस तरह ने, किसी की उम्र पुछो ना भी उम्र किन्नी है, 80 साल वाला घटा के कहेगा उम्र ते मेरी 70 साल, 70 वाला होर घटा के कहेगा उम्र 50 साल, 50 वाला घटा के कहेगा उम्र 30 साल, क्योंकि मैनू कोई बुढ़ा कवे ना, बापू जी कहे ना, सारे भाई कह के बुलाऊं, जवान ही रवां, क्योंकि मन अजे वासना दा भरिया है, ना ते चेहरे तो नजर आवे कि यह बुढ़ा हो गया, ते ना मेरी उम्र तो समझ लगे कि बुढ़ा हो गया, कोई गुनाह कर लवांगा ते लोग कह देंगे कोई गल नहीं, जवान है, जवानी दे अंदर गुनाह हुंदे ही ने, अगर दाढ़ी चिट्टी होई ते लोग मेरी निशानी नूं वेख के मेरे सामने मेड़ा देंगे, एक गल कहेंगे दाढ़ी चिट्टी हो गई, हुण ते गुनाह करन लगा, कोई संकोच कर, दाढ़ी चिट्टी हो गई, एक कोई कह ही ना कि दाढ़ी चिट्टी हो गई, इहनूं रोज रोज काला करना शुरू कर दिओ। दूसरी बेनती जो मैं कर रहा सा, उम्र घटा के बयान करना, मनोविज्ञानी कहिंदे ने कि इहदी मंग जवानी है, मंग बुढ़ापा नहीं है, ते पैना जिन्नी देर तक 60 साल दियां ना हो जाण, उन्ना समा 35 दे उत्ते अटक जांदियां ने, 35 तो अगे जांदियां ही नहीं, 35 तो बाद सीधा फिर 60-65, क्योंकि हुण कबूल ही करना पैना है, गिट्टे गोडे चलदे नहीं, बाहां अंदर जोर नहीं, हुण ते कबूल करना ही पैना है कि उम्र 60 साल हो गई है, वरना 35 तो अगे ने। तो भगत जी कहन लगे कि दाढ़ी हुई पूर,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਕੱਠਾ, ਕੱਠੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਸ ਗਿਆ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਕੱਠਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਕੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੱਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਮੂੰਹ ਕੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀ, ਇੱਕ ਦੰਦ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂਲੇ ਤੋਂ ਕੂਲਾ, ਨਰਮ ਤੋਂ ਨਰਮ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਕੋਲ ਪਕੋਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੰਦ ਕੱਸ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹ ਕੱਠਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਅਜਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕੱਸ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਕੱਠਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਏ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ, ਇਹ ਕੱਸ ਗਈ। ਦੰਦ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਚਬਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਦੰਦ ਕੱਸ ਗਏ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਚੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਾ ਵੀ ਕੱਸ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਕੱਠਾ, ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ, ਤੇ ਪਹਿਣਦਿਆਂ ਪਹਿਣਦਿਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਕੱਸ ਗਏ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੰਗ ਕੱਸ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਐਨਕ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਖਾਂ ਕੱਸ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੰਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਨ ਵੀ ਕੱਸ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਘੋਲ ਕਬੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਨ ਤਗਮੇ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਆ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਵੀ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਸ ਗਏ। ਤੇ ਕਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਏ, ਜੰਗ ਮੈਨੇ ਲੱਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਏ, ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਪਵਿਓਮ। ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਉਤਰਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਿਧਰੇ ਚੜਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪੱਧਰਾ ਸਾਫ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ, ਉਤਰਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ ਸੈ ਕੋਹਾ ਥੀਓਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੁਜਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ, ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠਾਂ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।
इनी निकी जंगिये थल डूंगर पव्योम परखें लगे अज फरीदा कूजड़ा सह कोहा थी ओम है ता मेरे नेड़े पर मेरे वास्ते इस तरह जिवे सौ को मेरे तो दूर हुंदा है, सौ मील मेरे तो दूर हुंदा है, वैसे को मील तो वड्डा है, पर मैं आम सादी भाषा वरतों विच लिया रहा ताकि सब दी समझ विच आ जाए। नौजवानों नूं को दा पता ही नहीं होना, बहुतियां नूं खास करके जिहड़े इत्थों दे बौरन ने, ता मैं लफज वरतिया कि अज ओ पानी वाला भांडा मैनू इस तरह महसूस हुंदा है जिवें सौ मील की दूरी उत्ते है, पर है बिस्तर दे बिलकुल नेड़े, बुढ़ापे दियां निशानियां ने। भगत फरीद साहब जी कहन लगे थाके नैन अखां वेख वेख के थक गई, श्रवण सुन थाके कन सुन सुन के थक गए, थाके नैन श्रवण सुन थाके थाकी सुंदर काया, ए तेरा सुंदर शरीर चल चल के बोल बोल के कर करके वेख वेख के दौड़ फिर करके थक गया। गुरबाणी दा वचन है, थाके नैन श्रवण सुन थाके थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी एक न थाक समाया। जरा जरा मैंने बुढ़ापा, गुरबाणी ने बुढ़ापे नूं एक रोग बयान किया है, रोग बुढ़ापा अपने आप दे अंदर ही रोग है। गुरबाणी दा एक बचन है कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जरा मैंने बुढ़ापा कहन लगे जिन्ना समा बुढ़ापे दा रोग तेरे ते नहीं आया, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी, हे मेरे मना परमात्मा नूं उन्ना समा जपन दा यतन कर, भजले रे मन सारंग पानी। त्यागा एक प्रश्न कर दिता, तनज भरिया प्रश्न, कहन लगे अपना भजस भजस कब पाई, हुण ते तू रब नूं नहीं जपदा, रब दे राह ते चलदा नहीं, चलेगा कदों, अपना भजस भजस कब पाई, आवे अंत ना भजया जाई। कहन लगे अंतला पा लाएगा ते फिर जपना भी चाहेगा जपया जाएगा नहीं, बहना भी चाहेगा बह पाएगा नहीं, गुरुद्वारे आना भी चाहेगा आ सकेगा नहीं, नित नेम बाणी दा जाप करना चाहेगा कर सकेगा नहीं, किसे दा भला करना चाहेगा हथां दे नाल नहीं कर सकेगा, सेवा करना चाहेगा नहीं कर सकेगा, क्योंकि शरीर थक गया। जरा हाक दी बुढ़ापे ने आण के ना आवाज दे दी कि सजना तैयार हो मैं आ गया, तू लख दवाइयां खा लख एक्सरसाइज कर लख कुचले खा, शरीर तेरा बिल्कुल नरोई हड्डी वाला होवे अरोग होवे, सब कुछ हुंदिया सुंदिया भी बुढ़ापा इना ताकतवरे आण के बह ही जांदा है। मैनू एक अदीब दे दो बोल चेते विच आए, वो कहिंदा है दो लफजों में पोशीदा मेरी कहानी है, पोशीदा कहिंदे ने लुकी हुई, फारसी दा लफज है पोशीदा लुकी हुई, कहिंदा है दो लफजां दे अंदर मेरे जीवन दी कथा लुकी पई है। उदीप कहिंदा है दो लफजों में पोशीदा मेरी कहानी है, एक लफज बुढ़ापा है दूजा लफज जवानी है, इस आलमे फानी की क्या बात करूं, अंजाम बुढ़ापा है आगाज जवानी है, आगाज मैंने शुरुआत, शुरुआत तो बाद अगे उदा अंजाम उदा फल। कहन लगे अंजाम बुढ़ापा है आगाज जवानी है, ये आलम फानी भी खूब है, सौ दिन का बुढ़ापा है दो दिन की जवानी है, ये चार दिन दी बहार है सजनों, इन्हें टिकना तुहाडे कोल नहीं, इस जवानी नूं सवारना चाहो सवार लो ते बिगाड़ना चाहो बिगाड़ लो, ये तुहाडा अपना फैसला है, तुहाडी अपनी जवानी अपना जीवन तुहाडा अपना फैसला। पर भगत जी कहिंदे ने फरीदा देख फरीदा जो थिया दाड़ी हुई पूर, कहन लगे तेरी दाड़ी पूर हो गई तू बुढ़ा हो गया, अगों नेड़ा आया अगा नेड़े नेड़े आ रहा है, मौत नेड़े नेड़े आ रही है। हुण इत्थे मैं अद्धा मिनट फिर तुहाडा लेना चाहवांगा, असी एक एक कदम चलदे चलदे रोज मौत वल नूं जा रहे हां, मौत वल नूं, मौत तों भज के दूर नहीं जा रहे, मौत वल नूं जा रहे हां, रोज मौत वल नूं। अपने शरीर नूं बड़े ध्यान दे नाल वेखो, साडे विचों रोज ही कुछ ना कुछ मरदा होया सानूं नजर पैंदा है,
कदी अखां दी रोशनी मर जांदी है, कदी कन्नां दी स्रोत शक्ति मर जांदी है, कदी मेदे दी पाचन किरिया मर जांदी है, कदी दंद मर जांदे ने, कदी गला मर जांदा है, कदी किडनियां मर जांदियां ने, कदी हार्ट ब्रेन मर जांदा है। मरण दा मतलब जो वापस नहीं आउंदा, ये मरदियां मरदियां सहजे सहजे गिटे गोडियां दा बल मर जांदा है। बड़े बड़े जवान पहलवान मायूस हो जांदे ने, मुथाज हो जांदे ने, क्योंकि शरीर दी ताकत मर गई है। ते मरदियां मरदियां पल पल कदम कदम करदियां करदियां ओ मुकाम आ जांदा है जद मरन वाला बाकी कुछ बचदा ही नहीं है। मौत जिस दिन आउंदी है मरन वाला बाकी कुछ रह नहीं जांदा, सब कुछ मर चुका है, सब कुछ मर चुका है। उस वक्त बंदे नूं आउंदी है होश कि मैं कुछ कीता नहीं। ते मैनूं फिर एक उर्दू दे शायर दा बोल चेते विच आउंदा है, वो कहिंदा है जब किश्ती सलामत थी, कहिंदा है जदों तेरे जीवन दी बेड़ी बिल्कुल साबत सी, बिल्कुल सलामत सी, जब किश्ती सलामत थी, मंजिल की तमन्ना किसको थी, अब किश्ती पे ऐसी शिकस्ता, मंजिल की तमन्ना कौन करे। वो कहिंदा है जदों तेरी किश्ती सी सलामत, उदों ते तू मंजिल वल जाण दा ध्यान कीता ही ना कि मेरी मंजिल कोई है, कोई परमात्मा रूपी चीज है, मैं उनु पाउना है, मैं उदे नाल जुड़ना है, उदे राह ते चलना है। मंजिल की तमन्ना किसको थी, अब किस्ती पे ऐसी शिकस्ता, हुण तेरी किस्ती हो गई है कमजोर, किस्ती हो गई है पुरानी, कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे शेक हजार, हुण ते हजारां सुराख बन गए ने तेरी बेड़ी दे अंदर। बेड़ा जर्जरा, जर्जरा कहिंदे ने पुराने ते कमजोर नूं, शिकस्ता भी कहिंदे ने जिहड़ी पुरानी ते कमजोर बेड़ी होवे। आख्या कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे छेक हजार, हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार। एक ते बंदे दा अपना वजन होवे बहुता, उत्ते पत्थरां दी माला इन्ने पाई होवे गल विच, वजन होवे दे सिर ते, तरना आउंदा ना होवे, सहारा देण वाला कोई नेड़े तेड़े होवे ना, इस तरह दा बंदा दरिया विच डुब्बेगा ही ना। बचन दा ते कोई उपाय नहीं, ना तैरन दी जाच, ना कोई सहारा, ना कोई बेड़ी, शरीर दा वजन पारा ते उत्तों सिर दे उत्ते पंड बन के रखी पत्थरां दी, हरवे हरवे। जिन्हां ने पापां अपराधां दा बोझ मौत आउण तों पहलां पहलां अपने उत्तों ला के पासे कर दिता है, अपने आप नूं हौलियां कर लिया है, बंधना तों मुक्त कर लिया है मौत आउण तों पहलां पहलां, कबीर साहब कहिंदे ने ओह ते जाणगे तार, पवजल की ए दुखां दा सागर, ओह ते तर जाणगे ते डूबे जिन सिर पार, जिन्हां दे सिर ते भार बड़ा है, रूह दे उत्ते भार बड़ा है, ते भार कादा है कीते होए गुनाहां दा, अपराधां दा, पापां दा। ओह डुब्बणगे, वच डुब्बणगे, उहनां नूं तारण वाला कौन है। तो खैर एक जगह दे उत्ते भगत भीखण साहब जी दे बोल मैं पढ़ के बड़ा हैरान होया। भगत फरीद साहब जी दी बाणी दी व्याख्या मैं बाणी विच्चों ही तुहाडे सामने रख रहा। भगत जी कहिंदे ने, भगत भीखण जी, नैनो नीर बह तन खीना पै केस दुधवानी, नैनो नैनो मैंने अखां, नैनो नीर बह, बुढ़ापे दी निशानी मैं तुहाडे सामने अर्ज कर रहा सन। जवानी दे अंदर ए अखां हिरन वर्गियां अखां, सब तो सुंदर अखां हिरन दियां मन्नियां गईयां ने। अखां दी गल करन वालियां विद्वानां ने ए कहा कि मृग नैन सब तो सुंदर हुंदे ने। जवानी दे अंदर अपने अखां दे नाल लोकां नूं अपने बस विच करन दा यतन करदा सी, अखां दे नाल मोह लैंदा सी। अखां सुंदर बड़ियां सन, डेले मोटे सन, दिख चंगी सी, पर बुढ़ापा की आया, दवाई दारू करदियां करदियां अपने आप ही इन्हां विचों पानी वगना शुरू हुंदा, पानी दिने भी वगी जांदा, पानी रात भी वगी जांदा, इन्हां दी सुंदरता चली गई, किधरे उडारी भर के दूर जाके बह गई। कहन लगे नैनो नीर बह तन खीना, खीना मैंने कमजोर, ते तेरा तन सारे दा सारा कमजोर होया, ना जवानी वाली सुंदरता चेहरे ते रही, ना जवानी वाला बल शरीर विच रहा। कहन लगे नैनो नीर बह तन खीना पै केस दुधवानी, इन्हां दा रंग बदल के चिट्टा दुध वर्गा होया, पै केस दुधवानी, रूता कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे पुराने।
ਗਲਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇਰੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ ਕਰੇਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਆਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਰੱਬ ਫੇਰ ਵੀ ਬੌੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਫੇਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਲਏਗਾ, ਖਬਰ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਰਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ। ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਪ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਿਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ, ਸਿਤਾਬ ਮੈਨੇ ਜਲਦੀ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਬਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੀਬਾਨ ਮੈਨੇ ਕਚਹਿਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਬਾਨ, ਪੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਬਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਤ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਰਜੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਦੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਜੋਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਗਾਂਵ ਕਿਚ ਬਾਕੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮੌਤ ਰਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਗਰਾਈ ਕਰਨਾ ਵਿਆਰ ਪਿਆਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਗਾਂਵ ਗਾਂਵ ਮੈਨੇ ਪਿੰਡ ਗਾਂਵ ਕਿਚ ਬਾਕੀ, ਲਿਓ ਨਬੇਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਗਾਂਵ ਕਿਛ ਬਾਕੀ, ਲਿਓ ਨਬੇਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਗਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵਿਆਰ ਪਿਆਰ ਵਹੀ ਖਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਗਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਗਰਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖਰਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋ, ਸੁਬਹ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਾਏ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਦਾ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵਕਤ ਮੰਗਾ ਜਬ ਵਕਤ ਤੰਗ ਆਇਆ, ਮਨ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾ, ਜਬ ਪੁਰਜੇ ਪੁਰਜੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵਕਤ ਮੰਗਾ ਜਬ ਵਕਤ ਤੰਗ ਆਇਆ, ਜਦ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਕਤ ਅਤਿ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਮੰਗਦਾ, ਵਕਤ ਮੈਨੇ ਸਮਾਂ, ਸਮਾਂ ਕੋਲ ਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅਧੂਰੀ, ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਭਾਵ ਵਕਤ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਵੀਰ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ, ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ, ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ, ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੌਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਨੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ, ਪਿੱਛਾ ਰਹਿਆ ਦੂਰ, ਪਿੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ 90 ਸਕਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਮੌਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇਰੇ

0: एक के अन्ना बोला पिंगला तन थका मन दह दिसता वे। कहन लगे अन्ना होया दिसना बंद होया, बोला होया सुनना बंद होया, पिंगला होया चलना बंद होया। अन्ना बोला पिंगला तन थका, तन ते तेरा गया है थक, मन तह दिसता वे। मन अजे भी काले कहां वांग दसा दिशावां नूं दौड़दा है। यह हुण तुसीं अपने उत्ते अजमा के वेखो, भाई साहब भाई गुरदास साहब जी का बचन झूठ कह रहे ने जां सच कह रहे ने, ते जदों अपने जीवन विच ए बचन नूं कटा के वेखोगे नजर आ जाएगा भाई साहब जो कह रहे ने हकीकत ही कह रहे ने, सच्चाई बयान कर रहे ने, झूठ नहीं। खैर भगत फरीद साहब जी का अगला बचन मैं एक होर इस श्लोक दे नाल संबंधित तुहाडे सामने रखदा चला। कहन लगे फरीदा अखी देख पतीनिया, पतीनिया का मतलब हुंदा है थक जाना, पतलिया हो जाना, कमजोर हो जाना। अखां वेख वेख के थक गईयां ने, कमजोर हो गईयां ने, पतलियां पै गईयां ने। सुन सुन रीने कन्न, ते सुन सुन के तेरे कन्न भी कमजोर पै गए, वह भी घस गए। मैं एक होर कबीर साहब जी का बचन इस तो पहला तुहाडे सामने रखा। कबीर साहब कहिंदे ने कबीरा राम ना चेत्यो जरा पहुंचो आए। कहन लगे राम तो चेत्या नहीं, जरा तेरे कोल पहुंच गया, बुढ़ापा तेरे कोल पहुंच गया। अगा कहिंदे ने लागी मंदर द्वार ते अब क्या निकसो जाए। कहन लगे द्वार, द्वार मैंने दरवाजा, मंदिर मैंने घर, मंदर दे दरवाजे उते, घर दे दरवाजे दे उते लग जाए अग, ते उस दरवाजे विचों ही ते सब कुछ बाहर कढ़ना सी, हुण बाहर कढ़ेगा कित्थों दी, आप निकलना है दरवाजे विचों, दरवाजे दे पांबड़ बल रहे। जे समान कढ़ना सी दरवाजे विचों ते दरवाजे ते अग बलदी नजर आ रही। कहन लगे हुण करेगा की, हुण बाहर कढ़ेगा की। बुढ़ापे दे अंदर आण के इहदे तमाम दरवाजिया नू अग लगी हुई अजे भी नजर पैंदी है। अखां दे वेखण दी तमन्ना बाकी, कन्नां दे सुनण दी अजे चाहत बाकी है, जुबान बोलना चाहुंदे, दंद चबाउणा चाहुंदे ने, अजे खाण दी मंग है, जीवन दी मंग है, पर अजे भी रब वाले दा ध्यान नहीं है, अजे भी परिपूर्ण परमात्मा चेते विच नहीं है। कहन लगे अखी देख पतीनिया, सुन सुन रीने कन्न, शाख पकंदी आईया। जिमें टहनी दे नाल लगा होया फल पकदा पकदा, पत्ते पकदे पकदे बुढ़े हुंदे हुंदे अपना रंग बदल जांदे ने, फल भी पक के रंग बदला लैंदा है ते पत्ते भी रंग बदल देंदे ने। होर करेंदी वन, कहन लगे मैं तेरे जीवन नूं वेख्या, तेरा जीवन भी पक गया है, तेरे जीवन का रंग ढंग भी होर दा होर बन गया, तेरे जीवन का रंग ढंग भी बदल गया। ते बदलिया की है, तेरे शरीर की बहार बसंत वाली चली गई, तेरे जीवन दे अंदर पत्ते चाड़न वाली बहार आन के बह गई। ये जीवन जो मिलिया है इहदे अंदर कुछ ना कुछ बनन दा अवश्य यतन करो, ते बनना तुसी किसे लिए नहीं, अपने लिए बनना है, अपने वास्ते बनना है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की कृपा दे नाल भगत फरीद साहब जी दे सलोकां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां तुहाडे सामने रखण दा मैं नमाना यतन कर रहा सा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी रहमत करन, जितने श्रोते माई भाई गुरु दरबार दे अंदर सुभाए मान हो, सबना दे मना विच सतगुरु जी गुरमत ज्ञान दी रोशनी बख्शिश करन और अज्ञानता दा हनेरा समूह मना विचों दूर करन दी कृपा करन।
1: श्री वाहे गुरु साहिब जीओ, गुरु गरीब निवाज, फरीदा काली जिनी ना रावया, तौली रावे कोए, कर साई स्यों पिरहड़ी, रंग नवेला होए। महला तीजा, फरीदा काली तौली। साहिब सदा है। जी को चित करे अपना लाया पिरम ना लगई, जे लोचे सब को एहु पिरम प्याला खसम का, जय पावे तैं दे। हरिदा जिन लोयन जग मोहिया, से लोयन मैं डिठ। कचल रेख ना सहंदया, से पंखी सुवे बहिठ। फरीदा कुकेंदिया चांगेंदिया,

दया से कित फेर है चित हरिदा कुकेंदिया जागेंदिया मती दिंदिया नित

0: प्याला खसम का जय पावे तैते। सतगुरु ए प्रेम वाला प्याला तेरी दात है, ए दात उन्हें मिलती है जिदे उत्ते तू मेहरबान हो जाना है, जिदे उत्ते तू त्रुट पैना है। फिर परमात्मा दे प्रेम वाली दात ना ते लुटी जा सकती है, ना खोई जा सकती है, ना चुराई जा सकती है, ते ना इनू साड़िया जा सकता है, ना इनू बर्बाद किया जा सकता है। ये दात मिलदी परमात्मा दी रहमत दे द्वारा है, ओदी कृपा दे द्वारा। आख्या जय पावे तां दे, खुदा मैं ते कर्म कर रहा पर मेरे कर्म इकले की करनगे जे तेरी कृपा ही ना होवे, मेरे कर्म की करनगे। आख्या जय पावे तां दे। तीसरा श्लोक भगत फरीद साहब जी दा, कहन लगे फरीदा कु केंदिया, फरीदा जिन लोयन जग मोहया, लोयन मैंने अखां, कहन लगे जिन्ना अखां दे नाल जगत नूं वेखदा रहा ते अखां दे वार कर करके जगत नूं ठगदा रहा। कहन लगे जिन लोयन, जिन्ना इन्हां दो अखां ने जगत नूं मोहया सी, से लोयन मैं डिठ, उन्हां अखां नूं मैं वेखिया। जवानी दे अंदर अखां दी बहार बड़ी सी, बुढ़ापे दे अंदर ना रहे। जवानी दे अंदर अखां दी चमक बड़ी सी, जब बुढ़ापे दे अंदर ना रहे। जवानी दे अंदर इन्हां नूं दूर दूर तक वेखण दी तौफीक मिली सी, बुढ़ापे दे अंदर इन्हां दा वेखणा भी बंद होया। पानी आप मुहारे चलना शुरू होया, अखां दी सुंदरता अपने आप चली गई। भगत जी कहन लगे से लोयन मैं डिठ, उन्हां अखां नूं मैं वेख्या है। कज्जल रेख ना सहिंदिआं से पंखी सूए बहेट, इन्हां अखां दे अंदर सुरमे दी तारी पैंदी सी, बर्दाश्त नहीं सन करदियां। ए भी वेख्या है कि मौत आउण तों बाद इन्हां दे अंदर पंखी आंडे देंदे नजर पै रहे ने। पंखी सूए, सूए दा मतलब आंडे देंदे नजर पै रहे ने, बहिंदे वेखे गए ने इन्हां ही नेत्रां दे खोल दे अंदर। अगर ये दो नेत्र मिले ने तो दो नेत्रां दे नाल कायनात विचों कादर नूं तकन दा यतन करो। इन्हां दो नेत्रां दे नाल, दो नेत्रां दे नाल पराए रूप नूं तक के मनमैला ना करो। दो नेत्रां दे नाल किसे दा चंगा वधदा फुलदा कारोबार वेख के अपने मन दे अंदर ईर्षा नूं ना आउण दिओ। इन्हां दो नेत्रां दे नाल जिथे असी गुनाह मैल इकट्ठी कर करके अपने मन विच लजाण दा यतन कर रहे हां, इन्हां दो नेत्रां दे नाल पूरी कायनात विचों कादर दे दीदार करन दी वी समर्था मनुख दे पास है। अगर ये चाहे इन्हां दो अखां दे नाल कायनात विचों कादर दे परमात्मा दे दीदार कर सकदा है। भगत फरीद साहब जी दे इन्हां सलोकां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां करन दा निमाणा यतन आप संगत दे सन्मुख कीता गया।
1: फरीदा कु केंदियां चा केंदियां,

मिठिया रब ना पूजन तुद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां विचों सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकागर करो, इस श्लोक नूं आधार बना के कुछ समझन ते समझाउण दा यतन करिए। फरीद साहब जी दा फरमान फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए। कहन लगे मनुख इस परम विच ते रहिंदा है के बारों मेरे सिर दे उते बजी हुई पग मैली ना होवे। हकीकत है कि मनुख नूं जितनी खबर बार दी है उना ही अंदर दी तरफों अनजान है। बार दे बारे समझ आ गई है, अंदर दे बारे समझ नहीं आई। अगर आई है ते बहुत थोड़ी आई है। यही कारण है जिन्ना साफ सफाई का ध्यान बाहर है उन्नी सफाई का ध्यान अंदर नहीं है। तन साफ होना चाहिए सब की तमन्ना है, मन साफ होना चाहिए किसी विरले विरले की लोचा है, सब की तमन्ना यह नहीं है। उस तो बाद तन दे कपड़े घर बार मोटर कार हर जगह जो शरीर दे बैन उठन दे कम आउंदी है वो साफ सुथरी चाहिदी है। इत्थे सब नूं पता है पर जिथे दीन दयाल निरंकार नूं वसदा रसदा वेखना चाहुंदे आ मन साफ चाहिदा है। इह किसे विरले विरले नूं पता है, सब नूं नहीं पता। तो इस तरह कह लिए कि लोग बार मुखी जीवन गुजार रहे ने, अंतर मुखी जीवन नहीं गुजार रहे। जब भी कोई रब जी दे राह दे उते अपने कदम रख के चलना शुरू करता है उदा ध्यान बारों हट के अपने अंदर वल जाना शुरू होता है। तो जब ध्यान अंतर मुखी होता है समझ आउंदी है अंदर बहुत कूड़ा करकट मैल ही मैल पई है, तो अपनी मैल नूं वेख के बंदा आप ही बेचैन हो जांदा है कि इतनी सारी मैल। अपनी मैल नूं वेख के अपने आप तो आप ही नफरत कर बैठदा है, इतनी सारी मैल ते वी मेरे अंदर। मैं ते समझदा सा नहीं है पर बहुत ज्यादी है, बहुत ज्यादी है। तो खैर ईसाई जगत दे अंदर ईसाई जगत दे बानी हजरत ईशा जी उन्होंने रब तो बाद नंबर दो दे उते सफाई नूं दर्जा दिता है। हजरत ईशा जी क्या करदे सन कि परमात्मा तो बाद अगर कोई साडा करना कर्म धर्म फर्ज बनदा है तो वो ए है कि बाहर भी सफाई होवे ते अंदर भी सफाई होवे। चलो अंदर दी सफाई दे संबंध विच हर पैगंबर ने अवतारी तेरे बरी पुरश ने जोरदार बचना विच किया है कि मन पवित्र चाहिदा है, साफ चाहिदा है। पर हजरत ईशा दी बाहर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने ते अंदर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने। जद तो मनुख ने होश संभाली है उदों तो लैके मैल अपने बाहर भी वेखदा आ रहा है ते मैल अपने अंदर भी वेखदा आ रहा है। ते फिर बाहर दी मैल दे संबंध विच इहदी कोई जानकारी है, इहनूं कुछ ज्ञान है ते बाहर दी मैल नूं धोण दे इह साधन लभदा रहा, साधना दी खोजबीन करदा रहा ते बाहर दी मैल नूं हटाउण दा यतन भी करदा रहा। उह मैल चाहे तन दे उत्ते या फिर तन दे उत्ते पए होए कपड़िआं दे उत्ते उस मैल नूं धोण दे साधन जुटाउंदा रहा, साधन लभदा रहा।
मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा, गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़िया दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, एक गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है ओ बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है, जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कह लगे भरिए हथ पैर तन देहे पानी तोते उतरसके है। ये बाहर दी मैल है, अगर हथ पैर भर जाते ने तो पानी नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी, साबण नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी। भरिए हथ पैर तन देहे पानी तोते पानी दे नाल तो लो उतरस खेहे लगी हुई मैल उतर जाएगी चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए देसा गुण लईए उह तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कह लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल ओ भी उजले हो जाएंगे साफ हो जाएंगे। पर किसी ने प्रश्न किया साहब जी अंदर दी मैल नू धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए मैल अंदर चली जाए, ते अंदर दी मैल नू बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिये मत पापा कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफज जिहड़ा आया ना उह पाप आया अपराध नहीं आया, इस जगह दे उत्ते इस तरह नहीं है कि अपराध लफज आया नहीं, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे भरिए मत पापा कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपन वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, भावे दोवे गुणा दोवे दोष दोवे तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच क्रोध निंदा चुगली ईर्षा तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने उदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आन के जेड़े बुरे कर्म करने असी शुरू कर देने आ उदा नाम अपराध है। अपराध नू डर हुंदा है हथ कड़ी दा कानून दा समाज दा, पर पाप नू ते भी डर नहीं है, क्योंकि पाप तां किसे दी निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदिर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहवांगा की सोच रहे हो तुसी इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानता, बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानता तुहाडे मन दे अंदर की विचारां दी तारा चल रही है। पर तुहाडे तन नूं ते आपां वेख ही रहे हां, सारे एक दूजे नूं वेख ही रहे हो कि तन आराम पूर्वक बैठा है, मन भी बैठा है नहीं बैठा है ते तुहानूं पता है या सतगुरु नूं पता है। तो पाप ना कानून दी पकड़ विच आउंदा है ना समाज दी पकड़ विच आउंदा है, अगर आउंदा है ते धर्म दी पकड़ विच आउंदा है, निरंकार दी पकड़ विच आउंदा है। निरंकार जानदे ने अंदरों असी मैले हां अंदरों असी पवित्र हां, निरंकार जानदे ने। दूसरे जो भी फैसला लेंदे ने ओह साडे बाहर मुखी जीवन नूं वेख के फैसला लेंदे ने, साडा बहना उठना चंगा है तुरना फिरना चंगा है बोल बाणी चंगी है,
लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ मनमुख हाँ, यह मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदे चला, डॉक्टर इकबाल ते इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसी होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रहे, पत्नी दे सामने हो रहे, धी दे सामने हो रहे, समाज दे सामने हो रहे ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रहे। गिरकट अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनू बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करने वास्ते किसी दे घर वे जाना पिया है, उत्थे कोई सोख समाचार है, इहदे अंदर भावे गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनू आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसी दे व्याह दे अंदर, किसी दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसी दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर भावे जैलसी है, अंदर भावे ईर्ष्या है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्होंने बधाई देन दी इहनू बड़ी चंगी तरह आदत है, कुशल है। ये जानता है कि खुशी का मखौटा कदों पाना है ते कमी का मखौटा कदों पाना है। खैरे मेरा विशा नहीं सी, अंदर जो बुराई है उदा ना पाप, जो बार बुराई प्रगट होके आ जाती है उदा ना अपराध। बस एक नुकता याद रखो, अपराध बार होंदा है ते पाप हमेशा अंदर होंदा है। हुण अपराध ताई बनता है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समा मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसी बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह की फसल का बीज बीजदा है उस तरह के ते बूटे पैदा होंदे ने दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़ देने मुड़ तो, उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दई है, उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी ये मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने तो उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवे आ जांदे ने, फुल तोड़ लेंदे हो फुल नवे आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लेंदे हो फल फिर समा पा के नवे आ जांदे ने, टहणियां नूं आप कट देंदे हो दो टहणियां कट दे हो दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीआं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहणी नूं कट रहे हो दूजी नवीं जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रहेगी ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करदे ने, कहन लगे भरीए मत पापां कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरीए मत पापां कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण, ना कोई सरफ, ना कोई होर लिक्विड, ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहन लगे ओह धुपै नावे कह रंग, धुप जाएगी, मायूसी दी लोड़ नहीं है। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तो बाद ओह मैल जाणी है, उहदा नां है परमात्मा दे गुण, परमात्मा दा चिंतन, ओह धुपै नावे कह रंग। एक बेनती मैं होर करदा चलां, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुणदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण सोच करे दिनस अर रात, इहनू लफज नूं सोच नहीं पढ़ना, सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है, तन सुचा रखना है। सोच करे दिनस अर रात,
मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारों सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारों तो बिल्कुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नू की असर पएगा। ठीक है लोकां दे सामने इन्नी को तेरी इमेज बन जाएगी बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहे है, ए बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जांदा, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता दा मुल तां ही पैंदा है जे मन सुचा होवे। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता दा ते बारी सुच दा कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आण के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, ये मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे दी वाधू सोचे मैं उहदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड दे अंदर लेके चली जांदी उहदी गल कर रहा। हुणे ही आप श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक दे अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड्डी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उत्ते केंद ने कहो नानक सच त्याइए, सुच होवे ता सच पाई है। हुण एक बेनती मैं होर करा, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे भी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने भी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, ये पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाई है, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, भी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो इहदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही भरम है, विश्राम देना तुहानू आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याइए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाईए, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां तां सुच बनदी है अंदर दी, सच पाईए जे सच दे गुणा नूं अपने हृदय विच वसा लवे। ते असीं की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाईए। असीं एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान दा फर्क खड़ा कर देने, सुच होवे तां सच पाईए। एक जगह ते मैनूं गुरबाणी दा बोल होर भी चेते आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने अंतर मैल गल मैं मन दी मैल ते तन दी मैल दी तुहाडे सामने रख रहा, क्योंकि फरीद साहब जी दा हुक्म अज इस तरह दा आया है। कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली हो जाए, मैं ते पग दे भरम विच रहा कि मैली ना होवे, मत मैली हो जाए, गहला रूह ना जाने कि सिर भी मिट्टी खाए, वे सिर भी मिट्टी ने खा जाना, मैं ते सिर ते बद्दी पग दा ही बड़ा ध्यान रखे, मन मैला हो जांदा है, इहदा ध्यान किसे नूं है, तन मैला ना होवे इहदा ध्यान सानूं सारिआं नूं है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, गुरबाणी दे बचन ने और कबीर साहब दी रचना दे बचन ने। हुण इन्हां बचनां नूं सुनन तो बाद जे बंदे दे मन दा भरम ना जाए ते फिर ते खिमा चाहवांगा, महा अज्ञानता दे हनेरे विच ही खड़ा है, फिर ते इनो ना गुरु दी आवाज सुनदी है ते ना किसे दूसरे दी। कह रहे ने अंतर मैल, अंदर तेरे होवे मैल, अंतर मैल जे तीर्थ नावै ते नौंदा फिरे 68 तीर्थां दे उते, अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना। कहन लगे इस तरह कम करन दे नाल मनुख नूं बैकुंठ ताम नहीं मिलदा, परमात्मा दे चरण नहीं मिलदे। तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे नाही राम एआना। लोक पतीने, पतीने मैंने पतीज जाना, पतीज मैंने विश्वास करना, लोक तेनू चंगा कहन, इस गल दे नाल कबीर साहब कहिंदे ने फर्क नहीं पैना। लोक पतीने तू लोकां दे सामने विखावे दी सोच रखे, कहन लगे दे नाल फर्क नहीं पैना। क्यों नहीं पैना? कहन लगे नाही राम एआना, परमात्मा न्याणा नहीं है कि जो तेनू अंदरों जानदा नहीं,
ਉਹ ਸੁਗਣ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਅਗਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ, ਮੱਜਣ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਮਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੋਚਣਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਓਏ ਮੈਨੇ ਉਹ ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਕਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਪਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ। ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ, ਕਾਇਆ ਮੰਜ ਸਕਾਉਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਮਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਮੰਜਸ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਉਣ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਤਨੀ ਛੂਆ ਛੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁੱਚਤਾ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾ ਹੁਕਮ
रोक दिता गया कि तू तंबाकू सेवन नहीं करना। कारण सी उहदा, अज हर शराब की बोतल दे उते लिखिया होया मिलदा है सेहत लई हानिकारक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने गुरु नानक साहब जी की पाक बाणी ने सानू हुक्म ला के रोक दिता तू इस पासे नहीं जाना। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ खुले ने। अच थां थां दे उते मीडिया दे अंदर रौला है कि एड्स की बीमारी का इलाज केवल परहेज है, पर धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ने पा हुक्म रोक दिता कि बस संघ एक ही शरीर का चाहिए, बहुत शरीर का नहीं चाहिए, ताकि तू तन करके भी तंदुरुस्त रहे, तन करके भी रोगी ना बने, तन करके तंदुरुस्त रहे, इस तरह के नियम बनाए, मन करके तंदुरुस्त रहे, गुरबाणी तेरी चोली विच पाई, गुरबाणी दे नाल जुड़। पर साडा सारा जोर बाहरी सोच दे उत्ते लग जांदा है, अंदर सोच बनदी है नहीं बनदी है, इस पासे साडा ध्यान जांदा ही नहीं। ते मैं ते होर भी कई बार हैरान हुंदा, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल जाना है ते इशनान करके जाओ, पर दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है, दूजे दे कोल जाना है ते कोई परवाह नहीं, भावे कोई तीन दिन का नाता है नहीं नाता, ओदे कोल रौल लाउन जाना है ते कोई बंदिश नहीं है, एक दे कोल रौल लाउन जाना है ते इशनान करना लाजमी है। कम से कम मर्यादा तो एक बना लो, या तो कहो करके जाना है, या कहो सवेर का किया काफी है, या कहो हर रौल ते करना काफी, एक मर्यादा तो एक घर की कायम कर लो। एक घर के अंदर भी एक मर्यादा नहीं, एक गुरुद्वारे के अंदर भी एक मर्यादा नहीं है, खिमा चाहवांगा। तो खैर गल मैं मैल दी कर रहा सां, तन दी मैल नालों मन दी मैल हजार गुणा बदतर है। मन दी मैल हजार गुणा बुरी है तन दी मैल नालों, मन दी मैल अति बुरी है, निरंकार दे घर दे अंदर प्रवेश करन ही नहीं देंदी। अगर किसी के तन के उत्ते पाए हुए कपड़े कालख दे नाल भरे होन, मिट्टी कटे दे नाल चिकड़ दे नाल भरे होन, या उहदा तन चिकड़ दे नाल भरिया होवे, कि आप उहनू कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के मिलदे हो? अगला चिकड़ दे विचों निकल के आया होवे तो की कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के उहनू आप मिलदे हो? मिलना चाहुंदे हो पर ये कहिंदे हो कि पहला सजना इशनान पान कर, अपने तन दे कपड़े उतार, तन दे कपड़े बदल, तन दे कपड़े साफ कर, तन साफ कर, ते तां उहनू आपां अपनी गलवकड़ी विच लै के मान देने उस तो पहला ने। जे तन मैला है ते असी अपनी गलवकड़ी विच नहीं लैंदे, ऐलानिया कह देना चाहुंना, जे मन मैला है ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गलवकड़ी दे विच भी नहीं आ पाओगे। गुरु ने वेखना है तेरा मन उज्जल है या नहीं है, पवित्र है या नहीं है। तन मैले वाले नूं असी कोल नहीं बहन देंदे, मन मैले वाले नूं सतगुरु कोल किवें बिठाउणगे? सतगुरु दी गड़वकड़ी दा निग किवें पा सकेगा जिहदा मन ही मैला है? चलो मैं होर एक बेनती उदाहरण वजों करदा चला। दुनिया दे अंदर मां वास्ते सब तो अमोलक दात, अमोलक चीज मां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाला बच्चा है। बच्चा बालपन दी उम्र दे अंदर अपनी अनजानता दे कारण अपने ही मल मूत्र दे नाल अपने तन दे कपड़े नूं भर लवे, ते मां दीआं अखां वेख लैण कि बच्चे दे तन दे कपड़े लबरेज हो गए ने, भर गए ने बच्चे दे मैले दे नाल। तो हुण मां लिबड़े तिबड़े बच्चे नूं इकदम चुक के अपनी छाती दा निक नहीं देंदी। पहला मां की काम करदी है? बच्चे नूं चुकदी है, उहनूं इशनान पान करवाउंदी है, तन दे कपड़े ला देंदी है, बदल देंदी है, दूजे कपड़े पवा के उहनूं साफ करके, ते तां मां अपनी छाती दा निक देंदी है, उस तों पहला नहीं। हुण मन भी इस तरह ही, अगर मन भी लिबड़िया तिबड़िया है, मन मैला कुचैला है, ते गुरु दी छाती दा निक किवें पाओगे? मन पवित्र करोगे ते गुरु चरणा दे अंदर बहन दी जगह मिलेगी, वरना नहीं। तनासरी राग दे अंदर श्री गुरु नानक देव पातशाह दा एक बचन आंदा है, कहन लगे दाग दोष लगे हुए कपड़िया दे उते दाग, ते मन दे उते दाग का दे लगदे ने मैलियां कर्मां दे, मन दे उते दाग का दे लगदे ने मैलियां सोचां दे। हजूर गुरु नानक साहब जी कहिंदे ने दाग दोष मुंह चलिया लाए
तेरे मुंह दे उत्ते बड़े दाग लगे ने, दोष ने, अपराध ने, पाप ने, तेरा मुंह कालख दे नाल भरिया है, कलंकित है। कह लगे दरगह बैसन नाही जाए, जाए दा अर्थ है जगह। कह लगे सच दे घर दे अंदर बहन वास्ते तेनू जगह नहीं मिलेगी। दरगह बैसन, बैसन मैंने बहना, नाही जाए, जगह नहीं मिलेगी। उत्थे आउणा है ते पूरा पवित्र होके आ, अधूरा पन नहीं चाहिदा। जितना समा मनुखी मन दे अंदर पूरी पवित्रता नहीं आ जांदी, उतना समा खुदा दे अंदर लीन नहीं हो सकता, दूर ही रहिंदा। इहनू वार वार चांस मिलदा रहेगा, जन्म मिलदा रहेगा। जितना समा अपने आप नूं पवित्र नहीं कर लै, उन्ना समा परमात्मा दे चरणां विच बहन दा समा नहीं मिलेगा। एक बेनती मैं इस संबंध दे अंदर होर भी करदा चलां। साडे तन दे उत्ते जिहड़े पाए हुए कपड़े ने, ओह कपड़े मैले हो जाण।

अग्नि जो पावे बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनो, चल रही लड़ी वार कथा विचार आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो। भगत फरीद साहब जी दी मुबारक बाणी विचों अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, सहुरे टोई ना लहै पेये ना ही थाओ। दो थावां दा जिक्र भगत फरीद साहब ने बाणी विच फरमाया, एक सौरा घर ते दूसरा पेका घर। कह लगे जिसनू सहुरे घर दे अंदर भी टोई ना मिले, टोई दा मतलब सहारा ना मिले, रहन वास्ते जगह ना मिले, पेके घर दे अंदर भी रहन वास्ते जगह ना मिले, वो जीव आत्मा आखर जाए किधर? क्योंकि बसियां जन्म लेंदियां ने, उम्र दा कुछ हिस्सा गुजार देंदियां ने पेके घर दे अंदर, ते बाकी दा उम्र दा हिस्सा गुजारिया जांदा है सहुरे घर दे अंदर। जिदे पास पेका घर भी नहीं सहुरा घर भी नहीं तो फिर आखर वो जाए किथे? कहन लगे सहुरे टोई ना लहै। उन्हें सरमज नूं थोड़ा जिहा समझन दा यत्न

गई कथूरी गंध जो बन जांदे ना डरा जे शह प्रीत न जाय फरीदा किती जो बन प्रीत बिन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वान दुख

साहिब सच्चे वेख एहो हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाप पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक गोद दा आनंद पा रहे हो, सरवण कर रहे सी गुरु के कीर्तनिया पासों रब्बी बाणी दा कीर्तन श्री आसा जी दी वार दा। मन बिरतियां एकागर करिए ते जुड़िए चल रही लड़ी वार कथा जो भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों चल रही है। भगत जी दा फरमान नाती तोती संभ ही सुती आए नचेंदा, जीव इस्त्री ना तोके। संभ ही दा मतलब हुंदा है सज संवार के अपना शिंगार करके, ना के कपड़े बदल के इशनान पान करके शिंगार हार करके सब कुछ करके ते निश्चिंत होके सौं गई। पति दे नेड़े नहीं गई, पति नू मिली नहीं है, पति नू याद नहीं फरमाया, पति दे मंदर विच प्रवेश नहीं कीते। हार शिंगार इशनान पान करन तो बाद फरीद जी कहन लगे निश्चिंत नचिंद। नचिंद दा मतलब निश्चिंत चिंता तो रहत, निश्चिंत होके सौं गई। फरीदा रही सो बेड़ी हिंगदी, हिंगदी बदबू बड़ी है ते दूसरे पासे गुलाब दे फुलां दी सुगंध भी बड़ी है, चंदन दी महक भी बड़ी है। जिमें चंदन दी महक अपने विच नवेकली थां रखदी है, हिंगदी दुर्गंध भी इस तरह अपनी जगह दे उते नवेकली थां रखदी है। आखिया तेरे मन दे अंदर हिंग वर्गी बदबू रही, रही कथूरी गंध ते कस्तूरी वर्गी महक तेरे जीवन दे अंदर पैदा ना होए। इस सलोक नूं खोलण दा यतन करदा चला। बंदा धार्मिक शिंगार ते कर लैंदा है पर धार्मिक बनदा नहीं है। तन करके धर्मी बन जाना बड़ा आसान है, मन करके धर्मी बन जाना परम कठिन है। जिन्ना वेशभूषा पहरावे तन करके धर्मी दिसना आसान है, उन्ना ही मन करके धर्म दे अंदर प्रवेश कर जाना ए महान है। बड़ी दुनिया धर्म दे अंदर प्रवेश कर जांदी है तन करके, मन करके प्रवेश नहीं करदे। किसे दे हाथ दे अंदर गीता फड़ी होवे, गीता दा पाठ करदा होवे, तीन धारियां वाला तिलक ओहदे मत्थे उत्ते होवे, तेरे धागे दा जनेऊ ओहदे गले विच होवे, धोती उहने बद्धी होवे, इस तरह दा अडंबर वेख के आप कह दोगे कि ए हिंदू धर्म दे अंदर खास मनुख है। गीता हाथ विच फड़ी रह जांदी है, जे कोई गीता दा सलूक मन विच नहीं गया ते फिर वो सही हिंदू अजे नहीं बनिया। ठीक दूसरे पासे भावे कुरान दी तलावत करदा होवे, हाथ विच तस्बी रखदा होवे, मोढे दे उत्ते मुसल्ला रखदा होवे, सूफ गल होवे, भावे उहदा लिबास काला होवे। सूफी संत अक्सर लिबास काला पाउंदे सन, मोढे दे उत्ते मुसल्ला। मुसल्ला कहिंदे ने जिहड़े कपड़े नूं विछा के नमाज पढ़ी जानी है। मोढे ते मुसल्ला होवे, सुन्नत होवे, मुच्छां कटियां होण, बाहरों नजर पेगा मुसलमान है ते पक्का मुसलमान है, कट्टड़ मुसलमान है। पर जे कुरान दी एक भी आयत ओहदे मन विच नहीं वसी ते उस कुरान दी आयत दे मुताबिक वह अपने जीवन नूं गुजार नहीं रहा ते कदा मुसलमान है। भावे सिर दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं रखिया होवे, हथ विच गुटका होवे,
और वेश भूषा चोला लम्मा होवे गिट्टियां तक चार माला सुटियां होन दाड़ा प्रकाश होवे पग दा रंग चंगा होवे पोच के बीबी पग बद्दी होवे वेखण नूं ते नजर आएगा बे सिख है ते सिख भी खास है सिख है ते सिख भी कट्टड़ है पर जे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा इक वी बचन उन्हें मन विच वसाया नहीं ते उन्हां बचना दे अनुसार वो जीवन दे अंदर चल नहीं रहा ते फिर कादा सिख है फिर ते बगले वाला लिबास है फिर कादा सिख है। तो मैं अक्सर एक बेनती करया करदा कि गीता दी जगदी हुई रोशनी मंदिर दी चार दवारी दे अंदर कैद होके रह गई है हिंदुआं दे जीवन दे अंदर गीता दे सलोक नहीं आए जे आए ने ते बड़े थोड़े हिंदुआं दी जीवनी दे अंदर कुरान दे पवित्र ग्रंथ दियां आयतां कुरान दी जगदी हुई शमा कुरान दी रोशनी मस्जिद दी चार दवारी दे अंदर बंद है मुसलमाना दे जीवन विचों कुरान नजर नहीं आउंदे अगर आउंदी है ते वो मुसलमान उंगलियां दे उत्ते गिने जा सकदे ने बड़े थोड़े खिमा मंग लवां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा महान ज्ञान प्रकाश ते ए जगदी हुई सच्चाई दी शमा गुरुद्वारे दी चार द्वारे दे अंदर बंद है साडे जीवन विचों बाणी दा कोई बचन नजर नहीं आउंदा और मेरा बोल शायद तुहाडे मन नूं चोट करदा होवे हकीकत है दुकान ते बह के यही चेहरा कोई होर रूप बटा लैंदा है गुरुद्वारे दे अंदर यही चेहरा होर हुंदा है धर्म यह नहीं है कि चलो गुरुद्वारे जाना है बह के दो घड़ियां सुनना है जा सुनाउना है मत्था टेकना है ते हाथ विच दात्री फड़ के रखनी है जिहड़ा दुकान ते आ गया रगड़ के धर देना है छिल ला लेनी है या कारोबार दे अंदर दूसरे दा हक खाना है वधीकी करनी है नफरत करनी है ईर्षा करनी है सारा दिन चुगली सारा दिन निंदा अगर ये सब बुराइयां मन दे अंदर मौजूद ने ते फिर सिख ता हां पर वखावे दे सिखा हकीकत वे सिख नहीं है सिखी केवल बारले पहरावे दा नानी और ए बेनती मैं अक्सर करता ही रहना क्यों करता रहना क्योंकि साडा ध्यान बार जुड़दा है पहरावे दे उत्ते जुड़दा है अंदर नहीं जांदा है गुरबाणी दे नेम गुरबाणी दे नुक्ते गुरबाणी दे सिद्धांत अपने मन विच वसाओ ते कारोबार करदियां वकत वेखदे वकत बोलदे वकत सोचदे वकत चलदे वकत तुहानू गुरबाणी दे ओ बचन चोट करदे रहन कि तू इस मार्ग ते चलना इस मार्ग दे उत्ते नहीं चलना अगर ते आप बाणी दे अनुसार चल रहे हो कह सकने आ सच्चे सिखो खिमा चाहवांगा नहीं चल रहे ते फिर भेखी सिखो केवल भेख करके पहरावे तो नजर आ रहे सिखो पर अंदरों सिख नहीं हो उहदे विच मैं भी आप भी शामिल हाँ तुसी भी शामिल हो। तो खैर भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने एक सुहागण ने इशनान पान कर लिया है हार शिंगार कर लिया है पर पति दे नाल सुला सफाई नहीं है पति दे नाल मन मुटाव है ते फिर वह सुहागण कादी होई कहना की चाहुंदे ने कि धर्म दे मार्ग दे उत्ते चलदियां चलदियां बंदा धर्म दे अडंबर बारों बारों कर लैंदा है पर पति परमात्मा दे नाल सुला सफाई नहीं लैन देन नहीं बैन उठन नहीं पति दे विचारां दे नाल सहमति नहीं ते भगत जी कहन लगे फिर अपने आप सुहागण है अपने आप दे अंदर सिख है हकीकत विच नहीं है। हुण मैं एक होर बेनती आप संगत दे सन्मुख करदा चला एक पासे एक पागल मनुख दूसरे पासे एक रब दा प्यारा भगत मनुख इन्हां दोवां दे मन दे अंदर जप चलदा है दोवां दे मन दे अंदर जो आम अकल दे तल नूं छड के अकल दे तल नालों थोड़ा उच्चा उठ के जीवन गुजार रहा है रब दा सच्चा संत सच्चा भगत कबीर साहब नामदेव साहब ते रविदास साहब वर्गा उन्हां दे मन विच भी जप चलदा है। दूसरा जो अकल नूं छड के आम दुनियावी तल नूं छड के थोड़ा नीवा जाके नीवी पद्धर दे उत्ते जीवन गुजार रहा है जिन्हों आपां कह दिंदे आ पागल पागल दे अंदर भी एक जप चलदा हुंदा है और लगातार चलदा है लगातार जप चलदा है जां पागल दे अंदर लगातार जप चलदा है जां एक सच्चे भगत दे अंदर विचकारले मनुखां दे मन दे अंदर लगातार नहीं चलदा। तुसी अपने वाल झाती मार के वेख लो
कदी तुहाडे मन दे अंदर परमात्मा दी याद हुंदी है कदी नहीं हुंदी है। कदी तुहाडे मन दे अंदर पुण चलदा है कदी पाप चलदा है। कदी मन दे अंदर ईर्षा दुश्मनी चलदी है ते कदी कदी चंगे गुणा दी माला चलदी है। परोपकार दे विचार चलदे ने, कदी शुभ विचार चलदे ने, कदी मैले विचार चलदे ने। टिकाऊ विचार साडे विच नहीं चलदे, कदी चंगे कदी मंदे, कदी बड़े उतली बुलंदी वाले, कदी बिलकुल डूंगी खड वाले, इस तरह दे विचार। रब दे प्यारे दे मन विच जप चलदा है पर एक तरफा चलदा है। एक पागल दे मन विच भी जप चलदा है पर एक तरफा चलदा है। रब दे प्यारे दे मन विच जिहड़ा जप चलदा है वो लगातार परमात्मा दा चलदा है और वो जप ओदी मंग है, वो जप ओदा शौक है, ओदी मजबूरी नहीं है। एक पागल जिहदा दिमागी तवाजन कायम नहीं रहा ओदे मन विच भी जप चलदा है पर वो बड़ी नीवी पत्तर दा जप चलदा है या पत्नी नूं दा जप चलदा है या पुत्रां दा जप चलदा है या पदार्थ दा जप चलदा है। पागल बंदा क्यों होया है, किस कारण करके चोट खा के होया है, जिथों ओनू चोट मिली पागल दे दिमाग दी सुई उत्थे रुक जांदी है। पागल ओही जप वार वार करदा है और ये कारण कदी किसे पागल नूं वेखो जिस कारण करके ओनू चोट लगी है समाज दे अंदर चलदियां चलदियां जिस पास्यों ओनू चोट मिली है पागल हो गया है, अकल गवा बैठा है पर हुण भी मन दे अंदर वो कुछ चलदा है ते जुबान दे उत्ते भी ओही कुछ चलदा है। और इस तरह दे बंदे अक्सर मिलदे ने, एक तरफा गल करदे होए मिलदे ने। पागल दा जप ओदा बोझ है ते एक गुरमुख दा जप ओदे बोझ नूं हल्कियां करदा है, संत दा जप ओदे बोझ नूं हल्कियां करदा है। पागल दा जप ओदी मजबूरी है ते एक सच्चे संत दा जप ओदी मजबूरी नहीं, ओदी मंग है, ओदा शौक है। पागल दा जप ओनू जन्म मरण दे गेड़ विच लियाएगा ते सच्चे रब दे प्यारे दा जप ओनू जन्म मरण तो रहित करेगा, जन्म मरण तो बचा देगा। इस अज दे महावाक विच भगत फरीद जी कहन लगे धार्मिक अडंबर तू कर लेना है पर तेरे अंदर जप नहीं चलदा परमात्मा दा, तेरे अंदर चिंतन याद नहीं चलदी ते ओ भी परमात्मा दी याद, परमात्मा दी याद नहीं ते बारो भेख बना लिया है। कहन लगे तू सच्चा नहीं है, भेखी है, केवल भेखी है। तो हुण मैं एक बेनती होर भी करदा चला क्योंकि अहम जिहा विशा है। अक्सर देश विदेश दे अंदर विचरदियां प्रेमियां वल्लों प्रश्न आउंदे ने सिमरन करना है पर किवें करना है, और सिमरन करन दियां विधियां भी तरह तरह दियां बयान कीतियां जा रहियां ने। एक बेनती मैं होर करनी चाहवांगा, मैनू कोई हक नहीं कि मैं अपने वल्लों तुहाडी झोली दे अंदर कोई विधि विधान पावां ते ओ विधि गुरबाणी विच होवे ना ते मैं तुहानू अपने वल्लों कोई जुगत बयान करां जी इस तरह करना चाहीदा इस तरह करना चाहीदा, मैनू कोई हक नहीं। हां गुरबाणी विच कोई विधि बयान कीती होवे ओ गुरबाणी दे बचनां नू खोलना, गुरबाणी दे बचनां नू एक्सप्लेन करना ओ ते साडी जिम्मेवारी है, पर गुरबाणी दी उलंघना करके अपने कोलों विधियां बयान करनिया जी इस तरह कर लो ध्यान जुड़ जाएगा, इस तरह कर लो ध्यान नहीं जुड़ेगा, ये ते गुरबाणी दी उलंघना, गुरबाणी दी तोहीन करनी ते अपने आप नूं वड्डा साबित करन वाला काम है। हुण जो मैनू समझ विच आया है परमात्मा दा सिमरन करन दी विधि की, पहला सिमरन नूं थोड़ा समझ लईए। संस्कृत भाषा दा लफज है सिमरन, पंजाबी विच उहनूं कह देंदे ने चेता करना और हिंदी विच कह देंदे ने याद करना। एक ही क्रिया दे तीन नाम ने, तीन भाषावां दे अंदर हिंदी विच याद, पंजाबी विच चेता ते संस्कृत दे अंदर सिमरन। जिवें पाणी, कोई पाणी नूं पाणी कह देंदा है, कोई पाणी नूं जल कह देंदा है, कोई पाणी नूं नीर कह देंदा है, कोई पाणी नूं वाटर कह देंदा है, कोई पाणी नूं आब कह देंदा है, कोई पानी नूं जल कह देंदा है, आखिरकार चीज ते इक ही है ना, उहदे नां बड़े ने चीज ते इक ही है, पदार्थ इक्को ही है, क्रिया इक्को ही है, कर्म इक्को ही है, उहदे नां तिन ने, याद करना, चेता करना, सिमरन करना। इन्हां तिन्नां विचों जो सब तो मशहूर लफज होया वह है सिमरन। सिमरन तुहाडे मन दे नाल संबंध रखदा है, मैं फिर याद करा रहा, याद करना।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ

चल रहा है। वो पानी नुकसानदायक है जो किनारियां नूं तोड़ के चल रहा है, फसलां नूं तबाह करेगा, पिंडां आबादियां शहरां नूं तबाह करेगा और मनुख नूं तबाह करेगा। जो हड़ दा रूप बन के आया है, जवानी जौबन हड़ दा रूप बन जांदी है जद इहनूं किनारे ना मिलन, इहनूं सीमा ना मिले, इहनूं होश दे नेत्र ना मिलन। अगर यह होश दे सीमा दे अंदर बजी हुई चले तो इस जौबन कोलों समर दा बड़ा कुछ है। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे, जौबन जांदे ना डरा, जौबन चला जाए मैनूं कोई डर नहीं है, पर इस दे इवज मिलना की चाहिदा है, परमात्मा दा प्रेम मिलना चाहिदा है। फिर मैं चलो मुखसर बेनती होर करदा ही चला, जिस प्रेम नूं असीं प्रेम जान लिया है हकीकत दे अंदर वो प्रेम नहीं है। ये प्रेम ते पशुआं कोल भी हुंदा है, शरीर शरीर दी कशिश विच रहिंदा है, शरीर शरीर दी पकड़ विच रहिंदा है। बड़ा नीमी पत्तर दा प्यार है, बड़ा हौली क्वालिटी दा प्रेम है, शरीर नूं शरीर दे नाल प्रेम है। और एक शरीर दूसरे शरीर कोलों रज जांदा है, शरीर कोलों भर जांदा है, ते ओ शरीर फिर दूजे शरीर लभण वास्ते चल पैंदा है। शरीरां नूं बदलना, शरीर दे नाल प्यार करना, यह पशु दे तुल प्रेम है। यह प्यार ते पशु कोल भी है। तुहाडा प्रेम थोड़ा उचेरा होना चाहीदा सी। दूसरा प्रेम है मानसिक तल दे उत्ते। मैनू इहदी जात पात धर्म मजहब कौम रूप रंग दे नाल कोई लैण देण नहीं है। इहदे मन दे विचार ते मेरे मन दे विचार मेल खा गए ने। मन दे विचार मेल खा जाण मित्रता बनदी है, विचारां दे अंदर तकरार बन जाए तो फिर दराड़ बन जाती है मित्रता दे अंदर। मित्रता किवें बनदी है? केवल मित्रता विचारां दे सहारे। विचार मिल गए ने तो मित्र है, विचार टकराउणे शुरू हो गए ने तो मित्रता खत्म है, दराड़ पै जांदी। कल तक दे मित्र अगले दिन दुश्मन बने हुए मिलदे ने। क्यों? एक दे विचार उच्चे हो गए ने, एक दे विचार नीवे हो गए ने। विचारां दे अंदर तकरार हो गया, विचारां दे अंदर टकराहट पैदा हो गई। नंबर एक दा प्रेम बड़ा नखित पद्धर दा, हौली पद्धर दा प्रेम, केवल शरीर दा रूप रंग नक्शो निगार वेख के किसे दे नाल प्रेम करना, पशु दे तुल प्रेम है। दूसरा प्रेम शरीर तो अगे चला गया है, हुण शरीर दे नाल लैण देण नहीं। इहदा शरीर काला है, शरीर गोरा है, नक्शो निगार किस तरह दे ने किस तरह दे नहीं, गल इस तो अगे चली गई। हुण गल विचारां दे उत्ते आ गई। इहदे मेरे विचार मेल खा रहे ने, प्रेम है, नहीं मेल खा रहे प्रेम टुट जांदा है। इस तो अगे एक होर प्रेम है, उहनू कहिंदे ने आत्मिक पद्धर दा प्रेम। मैनूं सारिआं दे अंदर परमात्मा दी आत्मा नजर आए, पहला मैनूं परमात्मा दी अंश अपने विच, ओही परमात्मा दी अंश सारिआं दे अंदर। ते जद आत्मिक पद्धर दा प्रेम बनदा है तो फिर सारिआं दे अंदर खुदा दी होंद भी महसूस होनी शुरू हो जांदी है। जो मेरे विच है ओह तेरे विच है। की फर्क पैंदा है? तेरे शरीर दा रंग किस तरह दा है, नक्शो निगार किस तरह दे ने, तू किस जात धर्म मजहब दे अंदर जन्म लिया है, की फर्क पैंदा है? गल ते इह है कि मिट्टी दे भांडे ने कुमार ने बनाए ने, तेरा रंग काला कर दिता है, मेरा रंग चिट्टा कर दिता है, तेरिया अखां दा आकार थोड़ा बदा दिता है, मेरा छोटा कर दिता है। की फर्क पैंदा है कि तू एक नगर दे अंदर जन्म लिया है, तू दूसरे नगर दे अंदर जन्म लिया है, मिट्टी ते के। तो खैर आत्मिक पत्तर दा प्रेम ये सर्वोत्तम प्रेम है। आत्मिक पत्तर दा प्रेम करन वाले ये नहीं वेखदे इहदा रूप रंग नसल जात भेद की है, वो वेखदे ने आत्मा मेरे विच, आत्मा ही इहदे अंदर। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे, निरंकार जौबन जांदा है चला जाए, जौबन जान दा डर नहीं है, पर मैं ये चाहना कि कम से कम इस जौबन दे अंदर ते खुदा तेरी होंद मैनू नजर आए, इस जोबन दे अंदर ते मेरा प्रेम उच्चा बन जाए। बड़े जोबन मेरे गए ने शरीरां दे नाल प्रेम कर करके, बड़े जोबन गए ने, एक जोबन नहीं, सुख गए कुमलाए, कितनी जोबन, किन्ने जोबन, किन्ने जोबन गए ने मेरे अज्ञानता दे अंदर, पटकद्या पटकद्या, टकरा मारद्या मारद्या, किन्ने जोबन चले गए ने। मैं जात पात दे बंधन दे अंदर बजदा रहा, मैं ईर्षा द्वेष दे झगड़े उठाउंदा रहा, निंदा चुगली दे अंदर चलदा रहा, ते जौबन खिसकदा रहा। समें ने ते नहीं टिकना, समें नूं तुसीं संभालना है, संभालो। समां तां वी अपनी चाले चल

जिन सिरिया तिने सुवारिया पूरी कोई करामात आप सृजन हारे तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारा वारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया

जियड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती खम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाय माया मोह भरम पै भूले सुत दारा शो प्रीत लगाई एक उत्तम पंत सुनहौ गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई परम सम्मान योग शब्द गुरु परमेश्वर जी दा खिरदा स्वरूप सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों आप जी ने हफ्तावरी जो विशेष दीवान सजदे ने अमृत वेले

आठ पहर गुण गावा तेरी पनहा खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजै बंदगी कवन बदाई कह सको दे अंत गुनिता कर कृपा मोहे नाम देखो नानक दर सरिता कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरिता परम सम्मान योग युग युग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों अज धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां दा प्रकाश दिवस आप जी मना रहे हो अमृत गुरबाणी दा कीर्तन

लगे मेरा सिर भी गुरु के सिंगो केवल तुहाडे वास्ते वे। जेड़ा गुरु ए बाणी विच कहे साहब सच्चे पिता सिंघां विचों निकले ने, ओ कहिंदा दोनों साहबजादे ओ भी अज आराम पै करदे ने। ते आखर एक बाप है ना, एक पिता है, किन्ने बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह दे तन्नू तकिया है, ते किन्ने उस वक्त सोए हुए बच्चों के सर को कहां पकड़ कर चल दोगे अब अब्बा को मुसीबत में जकड़ कर। ए पुत्र सवेरे तुसी चले जाने, मेरे तो उत्थे चले जाने जिथे तुहाडे दादा जी विराजमान ने, सोए हुए बच्चों को कहा सर को पकड़ कर चल दोगे अब अब्बा को मुसीबत में जकड़ कर, थी जिंदगी लिखी हुई किस्मत में उजड़ कर, कहने लगे अब मिलने का वादा तो किए जाए बिछड़ कर। ऐ पुत्र एक बारी मिलन दा वादा तय करो, अगले बचन कहे बच्चों जितन आनंदपुर तो तुरिया सा थे चार हो अब दो ही, हुन दो रह गए हो, सर जे भी ना होंगे दिल चढ़ेगा तुसी भी नहीं होना, हम शुक्र करेंगे अगर ये भी ना होंगे। मैं अकाल पुरख दा शुक्र करांगा मेरे पुत्र जे तुसी भी चले जाओगे। ते अगली गल जड़ी हजूर ने कही, कहन लगे फुरमाते थे कल दोनों ही परवान चढ़ोगे, दुख भोगोगे हम हद में तुम चैन करोगे, होते ही सैर दागे जुदाई हमें दोगे। ते अगली गल कही बेटा सपने में आकर कभी खबर अब्बा की भी लोगे, हे बच्चो सवेरे चले जाने होते ही सहर दागे जुदाई हमें देगे दोगे, कभी सपने में आके खबर अब्बा की भी लोगे। ऐ मेरे अजीत ऐ मेरे जुझार प्यारे, हम कहते हैं तू सुनते हो दिलदार प्यारे, मैं बोलना पया पुत्र कोई सुन दे हो, पुत्रा सुतियां नु आशीष दिती सिखां दे चरण चुमे। ते अज 22 दिसंबर दा ओ दिन चढ़िया है, शायद दुनिया दे इतिहास विच ना पहला सी ते ना आउण वाले समय विच आवेगा, जदो सूरज दी टिक्की निकलन तो पहला अज फिर नितनेम होए ने, आखा दीवार दे कीर्तन होए ने, पाठ कीते गए ने। ते उधर सूरज दी टिकनी टिक्की निकली ते हजूर ने जफरनामे विच कुछ जिक्र कीता चमकौर दी गड़ी दा, कह लगे आनंदपुर ए औरंगजेब मेनू अफसोस है, मेरे 40 भार भुखे पाने सिख ओ तेरे 10 लाख दी फौज पर तेनू अपने गिरवान भी झाती मारिया लग्या नहीं हुंदी। कहन लगे गुरसना चे कारे कुनद चेहल नर, मेरे 40 भुखे पाने सिख सन के 10 लाख बरायत बरो बेखबर ते तेरे 10 लाख दा टिटी दल सी। सूरज दी टिक्की निकली, कहंदे ने उस वक्त सब तो पहला जरनैल नार खां आया। मैं कुछ मिनट कह के समाप्ति करांगा, नार खां आया ते कहंदे ने पौड़ी ला के चढ़न लगा, मेरे कलगी वाले ने पहला तीर पाया अपने कमान विच, पौड़ी चढ़दे नु तीर नाल विन के धरती उत्ते सड़ दिता। दूसरा मुसलमान फिर पौड़ी ला के चढ़न लगा, ओदा नाम है गनी खां, ए ओ गनी खां नहीं जेड़ा माछी वाले वाला है, ए होर है, एदा नाम है गनी खां, हजूर ने उपरों गुर्ज मारिया, एदे सिर नु उन्हें इस तरह भन दिता है जिवें मानो मिट्टी दा भांडा पाईदा होवे, ए भी जमीन ते डिगा। ते तीजा सी ख्वाजा मरदूद जिन्हों मोहम्मद अली भी कहिंदे ने, जदो दो डिगदे दिखे ने ते ए लुकदा होया दौड़ गया। ते साहब ने जफरनामे विच क्या औरंगजेब दो नू मैं सद दिता सी, मेनू एक अफसोस के मरदूद जेड़ा अख बचा के निकल गया, जे किते पौड़ी लै के मेरे सामने आंदा ते एक तीर मैं ओदी छाती विच भी बख्श देना सी, ओ बच के निकल गया। हजूर कलगी वाले चमकौर दा जंग आरंभ होण लगा, ते सतगुरु ने जथे बना के तोरने आरंभ कीते ने। ए किवें अगे कौतक वापरदा है, ए आपां बुधवार दी शाम नू गुरु साहब कृपा करन कोशिश करांगा के जे संपूर्ण हो जाए, क्योंकि दर्दनाक एहो जिहा सक है

अकाल मूरत अजुनी सैपहं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच कवन वढाई कह सको बेअंत गुणीता

कहां करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का बड़ प्रताप। जिस मिले मन हुए आनंद, सो सतगुर कहिए है। मन की दुविधा बिनस जाहे, परम पद लहिए। बलिहारी गुर अपने, द्योहारी सदवार। जिन मानस ते देवते किए, करत ना लागी वार। करत ना लागी वार। परम सम्मान योग चवर छत्र दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए।